0: हेला नशाला हेला नशाला
1: दिवे ही एफएम के खुम में गटी रहे के फैशन विस दिवे ही अमिल रागे के लवे को

আসসালামু আলাইকুম নিউমা থেকে মেঘাহার্জ দিবে ফেম গেহুন তেরিনা ওয়ারাং উফাবের বগত কলকে এদেমো এহুন তেরিং গে হবো মিয়াদ গে শোয়াক মি বদল কলি আলোকে নাইশাত ফিনা ফিরাক ফিনা মিয়াদ গে শোয়াক ওয়েস এগার গে তিরিস হিংমা হামে ফিনা কুরিয়ে দাণ কুরিয়ে দায়রো এহুন তেরিং গে বাবের উমা একু এহুন তেরিং গে হবো মিশো কুরিয়ে দাণি এহুন তেরিং গে হবো তা মিশো গামি জাহাল দেনি এহুন মাইহুন তেরিং শোগা বাবের ওয়াম বেনওয়ানমা মেসেজ কুরানি পিএসএম ডিএফএম 91 পেজ ದಿನ ದುರ್ಗ ಹುರಿ ಫರಾತ್ ಕಲ್ಲವೆ ಖಾಸ ಕೊಲ್ಲಂ ನೋತ ಮೆಸೇಜ್ ರದ್ದು ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ವಾಣಮ ಎ ಫುರ್ಸತ ವಸ್ ಮಿಶೋ ಗೈ ಬಾಯ್ ಹಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಹೇನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಪೇಜ್ ಅಡು ಹಾಲಂ ಬೇಣು ವಾ ಲವೆ ಲವಾಗೆ ನಮಾಯಕು ಜಹಾಲಫ ಹಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಹೇನಿ ಫಿನಾ ಉಮೇದ್ ಕುರೇನಿ ಹಮ ಮೇದ್ಗ ಶೋ ಗಸ್ ವರ ಗಿನೈ ಹುಂತರಿನ ಬದ್ದಲ ವಾಣಿಕಮ ಮೇದ್ಗ ಶೋ ವಸ್ ಫಶಾಣಿ ಫಿನಾಗ್ ಫರತ್ ಗೆನಸ್ತೆ ವರ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗ ಮಲವೈಕು

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: लवे कफ बहुत लवे

के संडे फिर पप्पू जाए डांस क्लास, अंडे पे अंडे खाके पप्पू नाचे दिन।

0: দিবে হি এফ এম, দিবে হি নায়ক
1: মোদিহে একে মেঘাটস দিবে হি এফ এম।
2: Version 2.0
3: আসসালামু আলাইকুম, দিবাহি এফ এম কে এমেহা এহন তেরিন ওয়ারং উফাভের বাকুত কলকং এদেমুং ভার্জন 2.0 মি শোয়া একুগা মি বাদল করি সামা মি শোয়া কি লাভাতাও গে রিমিক্স আদি কাভা লাভাতাকান খাসাকো কেন কুরিয়া কেন দা শোয়ে কুরি গে রীতি হাঁদান্তা মিয়াতুগে জামানি রিদম তাকায়কু হিত্তাকা দিরুং গেনেস্তে আ বিট তাকেন আ ভাইব তাকেন আদি মুলিন তাফাত মিউজিকি আ তাজরিবা তাকেন মি আদি হামে হেমমে মি হামে কেনি লাভেনু এহে নমস মি তাফাত ইউসাস তাং আ কোতে হিতাং হামা জহং গেনিস্তে দাতুরাকং হেতে তো আলগন্ডু মাসাকে কুরানা রিমিক্স লাভাতাং আমুকং হুননি নেশুমা ফোরি গাদা জামানি মিউজিক কে মাচ্চা ege terega mi himeneni electronic dance music house and techno hip hop and rap latin reggaeton adi hama ehme deep house remix kurum ge saga feng emme furitama feshuni navarste ka fastola ha navarste ka haddi ha ge hartauka jamaica ge reggae musician unge tereng ege phong america ge disco adi hip hop culture ge tereng mi muli duniya feturi gen dia ಬಾಲಿಗೆ ಪೀಚೆ ಕಿಯಾಹೆ ಮಿ ಲವೇಕಿ ನವಾಜ್ತೇಕ ನುವದಿಹ ತಿಂವನಾಹರುಣುಕುಯಿ ಮಶೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲ್ನಾಯಕ್ಕೆ ವರ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅದಿ ಎಹಾಮೆ ಬೊಡು ಮಶೂರ್ ಕಮೆಂಗ್ ಹೋದಿ ಲವೆ ಮಿ ಲವ ಕಿಯಾಫವನಿ ಮಶೂರ್ ಲವಕ್ಯುನ್ ತೆರಿಯ ಅಲ್ಕಾ ಯಾಕ್ನಿಕ್ ಅದಿ ಇಲಾ ಅರುಣ್ ಅಲ್ಕಾಯಕಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಶೂರ್ ಕೀನ ಫಿಲ್ಮ್ ತಹಕ ಲವ ಕಿಯಾಫವ ಕುಳದಾಣ ಲವಕ್ಯುನ್ ತೆರಿಯೆ ಮಿ ಲವೆಯ ಬೆಹೆಗೊತ್ತುಂ ಅಲ್ಕಾಬುನಿ ಮಿಹಾ ಮಶೂರ್ ಲವೆ ಕ್ಯುಮ್ಗ ಹಿಸ್ಸಾವೆ ಉನೀತಿ ವರಂ ಉಫಾವಾ ಕಮ ಅದಿ ಲವೆಯ ಮೆದು ವರಂ ಹಿಂಗಮ ಜಹೆ ಕಮಶ ಮಿಯದ್ವೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಹುಗ ಲವಕಿಯಂ ಅರಾಯರು ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಬಯಕು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕುರ ಲವೆಯಕಿ ಮೀ ಕಮ
4: ಇತ್ನಾ ಮುಜೆ ಪತಾ ಥಾ ಕಿ ಅಗರ್ ಐಸೆ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ಗಾನೆ ಕೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈನ್ ಜೈಸೆ ಕಿ ಸುಭಾಷ್ ಘಯಿ, ರಶ್ಮಿಕಾಂತ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಾಲ್, ಆನಂದ್ ಭಗ್, ಸರೋಜ್ ಜಿ, ಮಾಧುರಿ, ಅಗರ್ ಜಬ್ ಐಸೆ ಲೋಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹೈನ್ ಇಸ್ ಗಾನೆ ಕೋ ಬನಾನೆ ಮೇ ಔರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ತೋ ಯೇ ಗಾನಾ ಬಹುತ್ अच्छे तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, सही तरह से इसको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर। इट टर्न आउट वेरी क्यूट और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। इनफैक्ट जब मैं गा रिहर्सल करने गई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के वहाँ, मुझे जब गाना सुनाया तो मुझे जब मेरी लाइंस लिखवाई तो मेरी लाइंस था चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। इट्स सो पॉपुलर, इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री। आज भी मैंने इतने हज़ारों गाने गाए, आज भी जब मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ तो लोग चोली के पीछे की डिमांड करते हैं।

अटक, लौंडों के दिल पटक पटक, सांसे जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: ढंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: हार्ट बीट

0: नुआ दिया है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम ईशान अमादो वागुतु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह